0: 朋友们，大家好，这里是新河县广播电视台综合广播，在电影的胶片里剪辑出时代的印记，欢迎走进我们的今晚聊电影，拉开时光的银幕，解析人生的爱恨情仇。接下来要为大家讲述的是一部印度电影《三傻大闹宝莱坞》，它是根据印度畅销书作家齐坦·巴哈特的处女作小说《五点人》改编而成的。
1: लेकिन बहुत सारा कॉलेज डिग्री के लिए नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए आया था। रंचू, रंचूरदास, श्यामलदास, सांसद, जितना अलग साले का नाम था, उतनी ही अलग सोच।
2: सर, आप जानते हैं हम कौन हैं?
3: प्राइम मिनिस्टर का बेटे हो तो भी, I will not accept your paper।
2: सर, आपको हमारा नाम और रोल नंबर पता है?
3: नहीं।